भगवंत सगल सुनगरी तुम्हारा सूत्र तारी तुमते होए सो आज्ञाकारी।

सोरठ महला पंजवा कर इसनान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरोगा कोट बिगण लाथे प्रभ शरणा परगटे भले संजोगा कर इशनार सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरोगा कोट बिगण लाथे प्रभ शरणा

प्रभु अपना पूरा कर्म गुरु का जप जपना सर्व निरंतर सुप्रो जाता बहुन योनी फर्मुना पुरखा सौद विषय मन जाके दुख दर्द प्रमथा का भाग सुख सहज आनंद नाम रस अनहद वाणी सहज सुना सुतनवंता सुप्रवध्याया सुपतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन बूठा सुपुर करमा नाशिना जल थल मही अल स्वामी सोई अवर न कहिए दूजा कोई गुर ज्ञान यजन काटू प्रम सगला अवर न दी सैंगिक बिना

मांगो जन तूर परमगत पाबो, जन्म जन्म की मैर मिटाबो, दीर्घ रोग मिटे हर औखद, हर निर्मल रापे मंगना। श्रावणी सुनो बिमल जस स्वामी, एकायो तत जो बिख कामी, निम निम पाए लगो दास तेरे, कर सुकृत नाही संगना। रसना गुण गावे हर तेरे, मिटे कमाते अवगुण मेरे, सिमरो सिमर स्वामी मन जीवे, पंच दूत तज तंगना। चरण कमल जप बोहित चरिए, संत संग मिल सागर तरिए, हर चा बंदन हर समतन वासी,

मन तने अर्प धरी हरे आ गए, जन्म जन्म का सोया जा गए, जिसका सा सोई प्रतपालक, हत त्यागी हम मैं हंत ना, जल थल पूर्ण।

जत कत देखो प्रभु सुख सागर, गुरु तूठ भंडार नाही रतनागर। अगा अगाह किसमित नहीं पाई है, सो बूझ जिस कर पंगना। छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिट भी ढंडा। कर गए काढ़ लिए परे अपने, अम्यों थार दे टंगना। एक

गुरु परमेश्वर गुरु गोविंदा गुरु कर्ता गुरु सर्वक संद गुरु जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सबके स्वामी जो सुनना प्रभु की वाणी।

हंस कीर्तार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फरमायो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फरमायो। गुण

सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देव परीक्षित गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो सुख देव परी

जिन बेद व्याकरण विचार ब्रह्मा गुण उच्चर जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो ब्रह्मांड खंड पूर्ण

गुरु नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो दुर्बा पुरो अंगरे गुरु नानक जस गायो कब कल सुजस नानक

0: गावन साध बिचारे
1: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे
0: गावे पढ़त पढ़ रखी से जुग जुग वेदा नाले
1: गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा माश प्याले
0: गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले
1: गावे जोत महाबल सूरा गावे खानी चारे
0: गावे खन मंडल पे मंडा कर कर रखे तारे
1: से ही तुदनो गावे जोत पावन रते तेरे भगत रसाले
0: और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे
1: सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई
0: है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई
1: रंगी रंगी पाती कर कर जनसी माया जिन उपाई
0: कर कर वेखे कीता अपना जित दी वड्याई
1: जोत पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई
0: सो पासा साहा पात साहिब नानक रहन जाई
1: मुंदा संतोख सरम पत्ती।

0: तंत्र
1: नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणसी
1: अरूपे अरूपे समस्तु निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा बृद कर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं
1: सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं
0: अच्छेद्य पेद्य नामं कामं
1: समस्तो पराजी समस्त सुतां
0: तेरा जोर चात्री छन जले है थले है अपीत है अपे है
1: प्रभु है जू है देश है
0: भुजंग प्रयात छंदे गादे बादे नंदी स्वरूपे
1: नमो सर्वमाने समस्ति निदाने
0: नमस्त्वं निर्माते नमस्त्वं परमाते
1: नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे
0: नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले
1: नमो सर्वदेशे नमो सर्वे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे
1: नमो साह साहे नमो महामाहे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
1: नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
1: नमो सर्व जीतन नमो सर्व पीतन
0: नमो सर्व ज्ञान नमो परम तानं
1: नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र
0: नमो सर्व दृश्य नमो सर्व कृष्ण

0: भुजंग प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता
1: चतुर चक्र जाने चतुर चक्र जाने
0: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती
1: चतुर चक्र काले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वसे
1: चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने
0: चाचरी छंद ना सत्रा ना मित्र ना परमंग ना पितरा
1: ना कर्म ना काय जन्म ना जाए
0: ना चित्र ना मित्र परे है पवित्र
1: अदृश्य अदृश्य कृष्ण
2: भगवती शांत।

0: है समस्तुल निवास है,
1: अगंजुल गनीम है, रजाइक रहीम है,
0: समस्तुल जुबा है के साहिब की राह है,
1: नरकम प्रनास है, बहतुल निवास है,
0: सरबुल गवन है, हमीसुल रवन है।

0: प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम
1: हर भर अखंड हर नर प्रपंच
0: गण प्रणाम मुन मन सलाम
1: हर नर अखंड भर नर मंडल
0: पवन आस मुन मन प्रकाश
1: गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम
0: जी अंग आसन अपंग
1: अपार गत में तू दार
0: जल थल अमंड दिस विश अपंड
1: जल थल महंत दिस विश बेअंत
0: पवन अस्त्र तर तुरास
1: आजान बाहु एक सुदाहु
0: ओंकार याद कथनी अनाद
1: खल खल ख्याल गुर भर अकाल
0: कर कर प्रणाम चित चरण नाम
1: अंचित गाता जितना बात
0: अंचंज गाते अनरंज बात
1: अंतुल पनार अंडठ अपार
0: आडीठ तरमत टीठ करम
1: अनभन अंत दाता महंत
0: हर बोल मना छंत है प्रसाद करुणालय है हर कल है
1: खल खंडन है मैं मंडन है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है।

0: विश्वंबर हैं,
1: सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं,
0: ब्रह्मंड से कलखंड से
1: काटे पर हैं, कृणा कर हैं,
0: जपा जपे थपा थपे
1: अमृत
0: अमृत अमृत है, करुणाकृत है,
1: अक्ता कीर्त है, तरनी कृत है,
0: अमृतेश्वर है, परमेश्वर है,
1: अक्ता कीर्त है, अमृत अमृत है,
0: जबा कृत है, अमृत अमृत है,
1: नायक है, थलकायक है,
0: विश्वंबर है, करुणालय है,
1: नायक है, सर्पायक है,
0: पवपंजन है, अर्गंजन है,
1: तापन है, जप जापन है,
0: अकलंकृत है, सर्वाकृत है,
1: हरता कर है, हरता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है,
1: आत्म बस है, जस के जस है।

0: स्वरूपे सदायंग संगे अपंगम विभूते। वाहे गुरु जी का खालसा,
1: वाहे गुरु जी की फतेह।
2: ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तब

0: मरोर मुवासन माते मतंगन मान मिलेंगे।
1: श्री पर श्री भगवान के पाप त्याग जहां निदान चलेंगे।
0: अपार बड़े प्रयाद बिचारे सार की तार पछैया।
1: तोरा देश मलिंद मुवासन माते ज्ञान के मान मिलैया।
0: गाड़े ग्रान को तोड़न हार सुबातन ही चकचार लवैया।
1: साय श्री सबको सिर नायक जाचक लेख सुएक दवैया।
0: दानव देव निंद साचर पूत पविक पुवान जपेंगे।
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सत्ता तपेंगे।
0: उन पतापन बाट जैन तुन पापन के वो पुंज खपेंगे।
1: सात समूह प्रसन्न फिरे जल सतर सबे लोग जपेंगे।
0: मानव इंद गजिंद नरादप जोंत लोग को राज करेंगे।
1: कोठ नान जाग दान लेख स्वंबर साज बनेंगे।
0: ब्रह्म महेश्वर विशन सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे।
1: जय नारी

0: साज को सुन लो सबे जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रपायो
1: काहु लिखे
0: हर वाची दिशा में काहु पिछा को थी।

सकृष्ट दिखाए अचंभव आज गास रूप संभव दूष जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण करता पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे रक्षा होए तहे सब काला दुष्टारे स्ट्रे तुत काला वृद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुर्चा सब सके न कोई।

किल भी सकल देखो हरता दुस दुखिन को शय करता मन बाशत बल पावे सोई दुख नत से व्यापत कोई दुख दर्द पौनिक।

0: जिन हर पल पाई।
1: हर रास मेरी मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा, सतगुर ते रास जानी।
2: हर हर नित जपियो जियो, लाहा कटियो दिहाड़ी।
1: एहो तन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाणा,
2: कहे नानका रास मेरी मन हो वण जारा।
1: ए रसना तू

0: जी की फतेह।
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करै नित संत बार गनी मन गारे
0: पश पशु नग नाग।

0: है दुख तो खन को दल दुजन के पल मैं दल डारे
1: खंड खंड पर चंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत सवारे
0: पार न पाए सके पद्मा पद बेद कते अपेद उचारे
1: उजी राज बिलोकत राज क्रोज वहन की रोजी न टारे
0: कीट पतंग कुरंग पुचंगम पूत पविक पवान बनाए
1: देव देव खपे मेव ना पेव लख्यो।

0: न पावे।
1: राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे।
0: और की बात कहा के तो सो सो पेटी के बड़ बीच बचावे।
1: जच पुचंग सुदान देव पेव तुम्हें सभी कर त्यावे।
0: उमा कास बताद सात जस पियंग सबे से में आवे।
1: पाए सके नहीं पार प्रभाव को नेथी नेत है बेद बतावे।
0: खो सके सभी कुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे।
1: नारद से चतुरानंद से।

0: मन में जे को मैं तो सबे जग जायो
1: वेद पुराण कतीब कुरान अफीन पान सबे पछारी
0: पे न पाई सके अनपेद को खेद थे अनशेद पुकारे
1: राग न रूप न रंग न रेख न साख न सोग न संग तिहारी
0: आदा

0: सतगुर प्रसाद तप प्रसाद चौपाई बनवा दे कंकारा जल थल मैयल की ओ बसारा
1: और पुरख अवगत अविनाशी लोक चतुर्दश ज्योत प्रकाशी
0: कीट के बीच समाना राव रंग जय सिर जाना
1: अद्वे अलख पुरख अवगामी सब कट कट के अंतर जामी
0: अलख रूप अछे

0: तन जी हो तह को जग में मुक्ते हर चित में युद्ध बिचारे
1: चढ़े पव सागर तारे
0: तीरज ताम बनाए तन बुत्स्यो दीपक ज्यों उजियारे।

तुम्हारी गत नित तुम ही जानी, नानक दास सदा। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हराए, श्री हर कृष्ण ते आइया जिस जिठा सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया करन उन दे आवै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पित्र पाठ दी दार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां, चालियां मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, जना नाम जपिया वंड के छकिया, दे चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता, तिना प्यारियां सत्यारियां दी पित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हेत सिह दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग नभाई, तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया, तना प्राचीन ते वर्तमान समें दे समूह शहीदां दी पित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरधामां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए, जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत, देख टेक फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहु दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी दे पितर दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बूंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा, मत उची, मत पादा राखा, आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ, श्री ननकाणा साहब अते होर गुरद्वारे गुरधाम, जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो जी। हे नमाणियां दे मान सतगुरु, नेताणियां दे ताण सतगुरु, गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज, आप जी दे पित्र चरण च अरदास बेनती की जाती है, महाराज आप जी की महान कृपा हुई, अमृत वेले दे पित्र दीवान आप दी हजूरी अंदर सजे सजे हुए दीवाना विच गुरु कीआं संगतां वल्लों संगती रूप अंदर पांच बाणियां दे नेत नेम होए, होर बहुत सारी गुरबाणी पढ़ी गई, सतगुरु बाणी पढ़दियां सुनदियां कई गलतियां भुल्लां हो जांदियां, जाण समझ के माफ कर देना, गां वास्ते शुद्ध बाणी पढ़न का बल बख्शिश करना, पढ़ी सुनी बाणी का भाव दाराइयां संगतां दे हिरदियां च वसाउणा। सतगुरु बेअंत संगत आप दे चरण परसन लई हाजिर हो रही है, कदम लेखे चलाउणे, सेवावां पिटावां अपने चरणां च दर प्रवान करनियां, सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शिश करके करतार्थ करना, परिवारां दीआं शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, जगत जलन दा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारा उभरै तत्ता लिहो उबार, सतगुरु संसार विच सुख शांति अमन सदभावना मुहब्बत दी सान बरकरार रखणी, समूह टहलीए सेवादारा दे सिर ते मेहर भरे हथ रख के अपने दर घर की सेवा सतगुरु जी प्राप्त करते रहना, गरीब नवाज पातशाह आप जी दे दर घर के सेवादार भाई सिमरजीत सिंह, बेटी मनप्रीत कौर, बेटी सुहाप कौर, समूह परिवार वालों मिल के पातशाह जी कारोबार की तरक्की, सुख शांति, चढ़ती कला, मन दे मनोरथां दी पूर्ति दे लई आप दे पित्र चरणां दा ओट आसरा तकदिआं देखदी सेवा प्राप्त कीती जा रही है। पातशाह परिवार दी अरदास बेनती प्रवान करनी, भेटा अपने चरणां च दर प्रवान करनी, कारज रास करने, अंग संग हो के विचरना, मन दे मनोरथ पूरे करने, खुशियां नाल गरीब नवाज पातशाह झोली भरनी, पिता सरदार सुरिंदर सिंह दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, सतगुरु आप जी दे चरणां विच पवित्र कड़ा प्रसाद की देख सजा के हाजर आ, दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद गुरु की संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करो पातशाह, कृपा करो हुक्म बख्शिश करो, बख्शे हुए हुक्म अनुसार जीवन ढालन की दात संसार की झोली च पाउणी, जो जी आप दे दर आवै
ਸੋ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦਾ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਆਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਗੇ ਬਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰਪਾਰ ਉਤਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सत दारा सिउ प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ गुर संगत तै मिलंत, जम त्रास मिटाई।

योग शब्दम ज्ञान शब्दम ए शब्दम ब्राह्मण ने खत्री शब्दम शूर शब्दम शूद्र शब्दम प्राकृत सर्व शब्दों एक शब्दम जे को जाने पे हो।

गोरे अमरदास कल उचरै ते अमर पद पायो जग जीतो सतगुर परमान मन एक ते आयो धन धन सतगुर अमरदास जे नाम दड़ायो नवद नाम दान रिश्ता की दासे सह सरोर अमरियो सह मिल पुष्प अबनासे आले भगत जित लाग तरे सो गुर नाम दड़ायो गुर रामदास कल उचरै हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत पुरा पीत पुबली ना हुटे सतगुर अथ अमृत रस कुटे प्रेम अत मत माता संतोख पिता सत सह समायो ए अजुन संभव्यो जत गुर बचन तरायो अवगत अगोच अपर पर मन गुर सदसायो गुर अमर गुर रामदास का उचरै ते जगत उदारण पायो जगत उदारण निदान भगते पवतारन अणबुद हर ना बिस्क विखे निवारन सहत रोज फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाइए धनते जन उठ भागे ते मुक्त पै सतगुर शब्द मन गुर प्रचा पायो गुर रामदास कल उचरै ते शब्द निशान बजायो सहज सदा सहज सुवन संतोष सदा चरियो सदा शिव सुनाव सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टे संगाद बो है अजूने पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरै ते सहज तरु रबास गुर जिन को सो प्रसन्न नाम हृदय निवासे जिन को गुर सो प्रसन्न दुत अंतर नासे गुर जिन को सो प्रसन्न मन भन नवारे जिन को गुर सो प्रसन्न सदलक पग जल तारे परचो परम गुर पायो तिन सचो जन्म जग श्री गुरु सन भज कब का कल कब भुगत भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया या जूर समाणे अनपुने जा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे ए राज योग रामदास तुम हो रस जाने जन कसोई जन पजाणिया उनम रथ तरिया सत संतोष समाचरे अपरासर परिया अकठ कर अमरापुरी जे देश हो पावे ए जन करा गुरु रामदास तुझ ही बन आवे सतगुर नाम एक लिव मन जपे दिल तिन जन दुख पाप कुख होवे जियो तरन तरन स्खन माता जा को दिस धारे शब्द रिद विचारे काम को खोवे जियो जीन सबन दाता अगम ज्ञान बखियाता ऐसे त्यान तावे पलक ना सो है जियो जा को देख दर जावे ना सुन गान दान पावे गुरमुख ध्यान गुरमुख मत मल तो वे जियो सब नाम एक ले मन जपे दिल तिन जन दुख पापकत होवे जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जाकिस साधक मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एक लाई है फुन जाने को तेरा अपार निरपुण रंग कर अकट कथा कथन हा तुझे बजाई है परम पुले सा छूटे जूनी संगा जमको ना डंड काल कुरमत त्याई है मन प्राणी मुगद विचार ऐ निस जप धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है होम बाल बाल जाओ सतगुर साचे नाम पर कर्म पर देव कम सेवा सेव एक मुख रसा रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत न अंत दूजा न मान ना सो अपार साध दीनो गुर रिद तर नल कव रा नव कल परस पारस कच कंचना हो चंदना सो बस जास सिमर अंत तर जाको देख द्वारे काम को दिही निवारे जी होम बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर राजो तख्त दीन गुर रामदास पृथ्वी नानक चंद जगत पे अना तारन मनुख जन की उपर गास गुर आनंद दी उपर निधान कठ कथा ज्ञान पंच पूत बस की ने संजमत नाथ दास गुर अमर गुरु श्री सत काल युग राखी पत अग्न देखत जगत चन कल जास सब वेद मान्यो मन तब ही पयो सुप्रसन्न राज जो तख्तन दियो गुर रामदास रड जिसे धारियो तर अर्व्यों अर्पण ते नीर सर अवर अनाड कियो सस रिख निस सूर दिन सहसुर तफल फल दियो सुर नर सप्त समुद्र क्या धारियो ते पण जास सोई एक न हर नाम।

कहे ना सके को तुम कदिका ब्रह्मा बिसना सिरेति अग्नता तिनको मोह प्या मन मदिका 84 लाख जून उपाय रिजक दिया सब हूँ को तदिका शिव के भरपूर जोग जोग वाह गुरु तेरा सब सदका वाह वाह का बड़ा तमाशा आपे हसे आपे चितवाए आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थमन आपे किया कड़ कड़ बासा आपे नर आपे फुनारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संग सबे विचार वाह वाह का बड़ा तमाशा किया खेल बड मेल तमाशा वाहिगुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन प्याल पूर रहया अमर ते मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमारथ सत संगत सेती मन खचना किया खेल बड मेल तमाशा वाहिगुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आदि जिस कोई न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित्य जिस भेद बखाण निरंकार नरवैर अवर नहीं दूसर कोई भंजन गण समराथ तरन तारन प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन्मसरा रसना रसे श्री सतनाम करता पुरख गुर आरामदास चित्ते बसाए गुरु समराथ गह करिया त्रुव बुद्ध समात समार समारन कौ पुन त्रम तुजा फैरंत सदाया गह पुंज त्रंग नवारन कौ मसरा जन जान कहे जे सास और कसुना विचार न कौ हर नाम बोस बडो कल मैं पव सागर पार उतार न कौ संत ही सत संगत सांग सुरंग रते जस गावत है त्रम पंथ तरे उतर नितर आप रहे लिवतार न तावत है मसरा पन भाग पले उनके मन इसत ही फल पावत है रव के सुत को

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच परंगण संग अलापे अठ नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नि संग उचरही प्रथम पैर भी बलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी पैरों की पंचो नारी पंच महारख दसाग सुनावे बंगाल मद माध बगावे ललत बलाव लगावे अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल को साग अलापे संग रागनी पंचो थापे गौन करी अर देव गंदारी गंदारी सी होती उचारी ता नासरी ए पंचो गाई माल राग को सासंग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परवर चंड को साग उबारा खाओ खटे खाओ खटे पौरा नदगाए अष्ट माल को सासंग लाए पुन आयो हंडोल पंच नार संग अष्ट सत उठे तान कलोए लगाएन तार मिलावई ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस आहिरी लै पारदा संग लाई पंचो यार जा सुरमा नंद भांस कर आए चंद्र बिमंगरण सुहाए सरस बानो आहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कह सवारी पुन आई दीपकी बारी काशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप का मोदी औ गुजरी संग दीपक थाप का लंका कुंतल औ रामा कमल कुशल चंपव के नामा गौरा औ कांदरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावे पंचो संग वरंगण लावे बैरारी करनाटी धरी गवरी गावे आसा वरी ते पासा सिंधवी आलापी श्री राग सो पंचो थापी सालू सारग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वै गावे पंचो संग वरंगण लावे सोरठ गौंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी ऊचा सरसो हो पुन कीनी मेघ राग सो पंचो तीनी बैरा तरगज तरके दारा जबली तरनट औ जल तारा

0: अंदर त्रिवत संतोखिया फिर भुख ना लगाया नानक दे गुरमुख करे सो प्रवान है जो नाम रहे लिव लाए पौड़ी हौ बलहारी तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम त्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवां हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों सब किल बिख क्रिखा तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर धरे विखा हर नाम सलाही रंग स्यों सब किल बिख क्रिखा तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर धरे विखा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा ब्रह्म बिंद तिस्ता ब्रह्मात्र है एक शब्द लिव लाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरे जो हर हिरदय सदा वसाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: जुग जुग अटल चवर तखत सिंघासन दे मालिक धन धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु रुपया दी साध संग जीओ सतगुरां दी पावन गुरबाणी दा फरमान है पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै दे महावाक अनुसार समूह सेवक परिवार वालों सरदार रजिंदर सिंह जी बीबी जतिंदर कौर समुचे परिवार वालों तीसरे पातशाह धन धन साहब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित अते परिवार की सुख शांति चढ़दी कला वास्ते बेटे हरप्रीत सिंह की देर होता तंदुरुस्तियों वास्ते समुचे परिवार के भले वास्ते परिवार वालों सतगुरां दीआं दित्तीआं हिदायतां दा शुकराना करदे होए सतगुरां दे पावन अस्थान ते परसों वाले रोज तो धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जी दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ कराए सन। गुरु साहिब जी दी अपार कृपा रहमत होई है गुरबाणी दे आदि तो मध मध तो संपूर्ण भोग पाए गए ने। गुरु साहिब जी कृपा करन धन गुरु अमरदास महाराज कृपा करन परिवार वालों जिस इस भावना करके सतगुरां दे पावन अस्थान ते सेवावां लईआं गईआं परिवार दियाँ सतगुरु जी गुरमत अनुसार मनोकामनावां मनोभावनावां संपूर्ण करन समूह सेवक परिवार के सिर ते सच्चे पातशाह जी अपना मेरा प्रयत्न रखन दरों करुणामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करन देह रोगता दीआं दातां बख्शिश करन। परिवार वालों आईआं होईआं संगतां दा धन्नवाद बेनती है गुरु का लंगर तैयार है सारियां संगतां ने गुरु का लंगर छक के जाने की कृपालता करनी जी भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।